मतकद गीते खोल खड खड बोरू अठ देने वा सो मिलन गीते गायन कराने जब प्यार की से होता है चित्रपट लता मंगेशकर।

मिलन गीत मधुमती चित्रपटे गायनेकराने मोहम्मद राफी तामत में जनप्रिय उन सुदुकालु चित्रपटे वाई जयंती माला समग्र दिलीप कुमार तमा मे चित्रपटे रंग पैवे इतिंग अभी तोरा गत्ता ओबे इल्लीमानु मे गीत बहुत दिन के लिए तिबुना मधुमती चित्रपटे गीत गणना वक्म ए अतरिंग मातोरागत नत्तम वेडिबंदिने किल्ला तिबु गीते अभी दन सवंदेमु

मिलन गीते जब प्यार किसी से होता है चित्रपट दशम से हटे एक गीत में चित्रपट प्रदर्शन है उन्हें मोहम्मद राफी समग्र लता मंगेशकर तमाम गीते गायने कराने सो नेक्स्ट लीड फ्रॉम 1900 आयन उन सेक्सिंग जब प्यार किसी होता है उन मोहम्मद राफी मिट लता मंगेशकर।

0: मिलन गीते मोहम्मद राफी गाने कराने चित्रपटे दोस्त थी सौंद एक गीते तो सो नेक्स्ट लीड फ्रॉम मोहम्मद राफी
1: सुख हो या सुख जब सदा संग रहे ना कोई

मिलन गीत मन्ना डे गायनिकला श्री हारसे विश्व चित्रपट नेक्स्ट लीड फॉर द फिल्म 300 स्वांसिक फॉर मंडा डे

इंद्रसनम से हैटे वसरे प्रदर्शनी उनु दिल अपना और प्रीत पराय चित्रपटे रंगपानवा मीना कुमारी राजकुमार ओम प्रकाश समग किशोर साहू संगीते सपयाने शंकर जाय किशन में गीते गायना करनवा लता मंगेशकर दिल अपना और प्रीत पराय लिफ्ट 1966 हाउप्ट्रोलग स्पेल्ट मीना कुमारी उन राजकुमार म्यूजिक फॉन शंकर जायकिशन उन दिस लीड फॉन लता मंगेशकर।